पॉलिटिकल असाइलम या पॉलिटिकल जेल आप कह सकते हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर।